सभी सुनने वालों की सेवा में मेरी तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब सुम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है, भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, आज बीफ बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है। आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है, शुभ सुबह जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए ये प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में पेश किया जा रहा है, हमारी सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो एसबीएस के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो सियू का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। हमारी सभी सुनने वालों को एक बार फिर से वेलकम, स्वागत किया जा रहा है जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो एसबीएस का। और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं एक भजन जो पेश किया जा रहा है गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में। जरूर आप सुनते ही रहना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रेडियो वेस में इसकी सर ये गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0-3-2-2-6-6-6-11 तार की नंबर पर स्टूडियो की ओर हमेशा आप तार कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं गुरमीत और मीना की आवाज में सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। एल्बम का नाम है हर हर महादेव पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये सुंदर सा भजन।

सुंदर भजन गुरमीत और मीना की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में एक सुंदर सा भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

मोहम्मद रफी की आवाज में सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। चले प्रोग्राम में गणेंद्र जी की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है। आज की प्रोग्राम में जरूर सुनते ही रहना।

नागेंद्र जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए अबकी बार एक और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए रेडियो SBS के जरिए।

SBS के जरिए सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। आसरा उम्मीद है सुनकर और बेहद पसंद किया है। चले अब की बार मिका सुखू जी की आवाज में एक सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

बस की गई है। चलिए प्रोग्राम में आखिरी भजन पेश किया जा रहा है और आखिरी भजन होगा आरती भजन, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से भी, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी जो आज नौकरी करने वाले है, काम करने वाले है, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

अनुराधापुर और सोनू निगम के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं। 11 मिनट बाकी है सुबह 8:30 बजे में रेडियो वेस्ट में इसकी जरिए प्रोग्राम पेश किया।

किया जा रहा है। सभी सुनने वालों को अनहेल खुद मोर्ख गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। जहां जहां पर भी आप सभी इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं, मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। आज का मौसम भी खूबसूरत सुहाना मौसम होने वाले हैं। झूरा मौसम, धूप का मौसम, टेम्परेचर तकरीबन 19 डिग्री होने वाले है, 9.3 ग्राद सेल्सियस। चले प्रोग्राम में अगली बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। अभिजीत और साधना सरगम, अभिजीत और साधना।

66611. चलिए अब की बार कुमार सानू जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है,

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे घी गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए फिल्म गुड लक, उसी फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है सुखविंदर सिंह और शिल्पा राव की आवाज में।

सुखविंदर सिंह एन शिल्पा राव की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चले गाना प्रोग्राम में कमल खान और नीति मोहन के आवाज में आज की प्रोग्राम में

की गई रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-6560। हरिहरन आपकी बार प्रोग्राम में

दूसरी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई है। चले किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

की सेवा में। चले प्रोग्राम में मुकेश जी की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मुकेश की आवाज में आपकी बार ये खूबसूरत गाना प्रोग्राम में जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना।

का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा। फिल्म का नाम आसपास, मोहम्मद रफी एंड लता की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी लता मंगेशकर की आवाज में। मन मौजी फिल्म का नाम।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में कुछ पुरानी नगमे रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी

आशा भोसले की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना आज की प्रोग्राम में मुकेश और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। कुछ पुरानी नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। किशोर कुमार की आवाज में ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है मोहम्मद रफी की आवाज।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। असरों मीठे गाना सुनकर और

धर्मेंद्र का खास एक्टिंग किया हुआ गाना बसपेश की गई फिल्म का नाम कब क्यों और कहां। मोहम्मद रफी की आवाज में आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में ये गाना पेश की गई। शीशे का घर फिल्म का नाम, अनूप घोषल की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। तुम साथ हो जिंदगी भर के लिए। सभी सुनने वालों जो स्टूडियो की ओर तार किया, रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, शुक्रिया धन्यवाद कि आप सभी इस वक्त पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम से मजा लेते हैं। तुम

शीशे का घर उसी फिल्म का ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम DAB प्लस रेडियो के जरिए भी अपना मोटरकार में अपना घरों में आप सुन सकते हैं। हॉलैंड देश के बीच में मिड नीदरलैंड में दूर दूर शहरों तक और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी ये प्रोग्राम DAB प्लस रेडियो के जरिए बस सुनाई देता है। तुम साथ हो जिंदगी भर के लिए शीशे का घर उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में 6 मिनट बाकी है सुबह 10:30 बजे में।

द नाइटिंगेल ऑफ एशिया, आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, हर एक कामों काज के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-2565-6060। चले प्रोग्राम में किशोर एन लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है किशोर कुमार।

मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। आई द फिल्म कर्स 1980 का फिल्म 1980 का खास फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। मुकेश एन लता आपकी बार प्रोग्राम में। ये शमा ये खुशी बोलो जी बोलो जी। मुकेश और लता जी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है।

ये शब है ये खुशी, बोलो जी बोलो जी। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नखमे पुरानी फिल्मी गाने आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। चलिए प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। सभी हिट गाने सभी हिट सॉन्ग्स इसी रेडियो स्टेशन के जरिए हमेशा पेश किया जा रहा है, संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS।

आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। ये तोहफा तुम्हारे प्यार का, आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में किशोर कुमार होगा, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस

0: किशोर कुमार की आवाज में गाना पेश की गए गोरी ओ गोरी। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl है। किशोर कुमार के बाद मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।
1: खुद ही इन गहरी घटाओं से बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से। जा जा
2: अरे जा जा
3: जा जा जा

बदल कर भेष परवाने का क्षमा झिल मिलाती है नशीली शाम के पर्दे में सुबह मुस्कुराती है वो शोला हो के चिंगारी मचल कर नाच जाती है तो धड़कते दिल से मेरे मद भरी आवाज आती है ए, ए, ए, ए, जा जा अरे जा जा जा जा जा रे जा जा

शराबी नैन के प्याले के दिल का हाल कह देते हैं दोनों ये हिम्मत वाले। नहीं डरते किसी से जीत कर भी हारने वाले, कयामत की नजर रखते हैं लेकिन ताड़ने वाले। जा अरे जा जा जा रे।

0: छोटे मियाँ लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड अटिटिया नारायण फादर एंड सोन सामन लाइव ऑफ हेट पोडियम बिलीव एन अनफर्गेटलिके अवन फुल इकोनिसे बॉलीवुड हिट्स प्रachtige म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम टॉप निवेल
1: रुक जाओ दिल दीवाने
0: सोंदर 15 नवंबर सोंदर 15 नवंबर इन रोटरडम अहोय आरटीएम स्टेज ट्वी जनरेशंस एन पोडियम एन अनफर्गेटलिके अवन मिस deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chote Mia live in concert Udit.

ये गाना बस आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है वेबसाइट radio.sbs.nl। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर, जावेद अली एंड सुनिधि चौहान की आवाज में।

En श्रेया जी की आवाज में सोनू निगम एंड श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई दबंग फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म दहे की ओर। उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल।

और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए 0322 65 65 60 है। कुमार सानू एन

रेडियो SBS के जरिए कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में हिमेश रेशमिया और साथियों की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। गाना का बोल है उमराव जान।

हिमेश रेशमिया और साथियों की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो वेस में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले अरिजीत सिंह।

अरिजीत सिंह की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में कौर खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

रेडियो SBS के जरिए राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर सुनते ही रहना।

सरगम और सुरेश भटकर की आवाज में ये गाना बस पेश की गए नाम गूंज जाएगा फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चले प्रोग्राम में सोनू निगम एन श्रेया जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

श्रेया जी की आवाज में, सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। चले फिल्म नकाब की ओर, जावेद अली की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए श्रिया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में।

सर ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई श्रेया घोषाल की आवाज में नजर फिल्म का नाम। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। चले प्रोग्राम में सोनू निगम महालक्ष्मी आयर और साथियों के आवाज में एडो फिल्म नील एंड निकी। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रिक्वेस्ट भी इसकी जरिए एंड फिल्म गुरु गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हाजिल फिल्म का नाम उसी फिल्म से ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना अभिजीत की आवाज में। चले प्रोग्राम में अलका जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

फिल्म का नाम हाँ मैंने भी प्यार किया, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में अलका जी की आवाज में। सुनने वालों चले प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना जो पेश की गई साउद खान और प्रभा की आवाज में, तो फिल्म परवाना उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले आपकी बार फिल्म खेल की ओर हम आपको ले चलते हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।

रेडियो SBS की जरिए कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। एक बार फिर से कुमार सानू जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है और गाना

कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। उदित नारायण

सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब कई बार अतीफ असलम की आवाज में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

अतीफ असलम की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम कसम से।

कयामत से कयामत तक उसी फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू और महालक्ष्मी आयर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। फिल्म का नाम कयामत, एक फिल्म जो 2003 में बस रिलीज की गई है।

एडवांस में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की सर ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से अलका जी की आवाज में खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है, साथ में होगा कुमार सानू।

गाना बज प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और चलिए आज की इस प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अनवर हुसैन एन चंद्रानी मुखर्जी की आवाज में ये गाना।

की सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड की जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि रोजाना की तरह आज भी बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं। जब भी ये दिल उदास होता है, मोहम्मद रफी एंड शारदा।

0: मोहम्मद रफी
1: मगर
0: और साथियों की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब आपको ले चलते हैं गाना जो किशोर कुमार की आवाज में पेश किया जा रहा है। किशोर कुमार प्रोग्राम में

कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अभी नव रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं संगीत भरी स्टेशन जो शेरुत्रेख से पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर।

0: कह दो, हाँ कह दो, अरे हाँ कह दो,
1: एक बात कह दूँ,
0: कह दो
1: दिल की बात कह दूँ,
0: हाँ कह दो।

0: बात पूछूं,
1: पूछो
0: दिल की बात पूछूं,
1: हाँ पूछो।
0: मरने से बदनाम जी होगा नाम तुम्हारा नाम, बोलो बोलो क्या ख्याल है।

और रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस्पेश की गए पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म कठपुतली, फिल्म कठपुतली का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11 और बाकी हर एक इंफॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर 03-22-65-65-60 है और इस टेलीफोन नंबर पर तार का नंबर पर 24 घंटा लगातार आप तार कर सकते हैं। 24 पर दाग बार एक बार होता है आपकी सभी और सभी कामों काज के लिए। आज के प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे गाना जो पेश किया जा रहा है यशुदास की आवाज में। यशुदास की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

यशुदास की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में यशुदास के बाद गीता दत्त की आवाज में फिल्म बाजी का गीत पेश किया जा रहा है।

उसी फिल्म का ये गाना पेश की गई, ओ मेरे दिल की चैन। रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना ये खूबसूरत गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई। बहुत सी सुनने वालों, बस रेडियो SBS का ये प्रोग्राम सालों से बस सुनते हैं, जो खास तौर पर शहर उत्तराख हॉलैंड का सबसे खूबसूरत शहर से बस पेश किया जा रहा है। फनाउट हट फन नीदरलैंड, फनाउट मिड नीदरलैंड, हॉलैंड के बीच से ये आवाज निकलते हैं, और वो भी सालों से सुनने वालों ये रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम को सुनते हैं। रेडियो SBS संगीत भरी स्टेशन का प्रोग्राम। हम आपको ले चलेंगे एक गाना की ओर, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है, और फिल्म का नाम है गूंज उठी सहनाई। जीवन में पिया तेरा साथ रहे,

साथ रहे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गई, गूंज उठे सहनाई फिल्म का नाम और उसी फिल्म का ये काफी प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सिनेवालो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302-62-66-11। इसी तार की नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। चलिए मोहम्मद रफी की ओर, मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, शेरों की बादशाह और संगीत का फरिश्ता मरहूम मोहम्मद रफी।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन वालो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है इज आर द फिल्म अजनबी एंड आर द फिल्म दबंग 3 कम खसों तो जावेद अली नैना लड़े।

अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में आपने सुना सुन मितवा। फिल्म का नाम है लगान। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म गदर से। उदित नारायण की आवाज में आप सुनिए उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।

फिल्म मेड इन चाइना से आपने सुना नेहा कक्कड़ की आवाज में ओढ़नी, और अब आप सुनिए सोनू निगम और अलका याचिक की आवाज में फिल्म रेफ्यूजी से। ये फिल्म पहला फिल्म है अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का। ऐसा लगता है जो ना हुआ है होने को है।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं।
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

फिल्म अमर प्रेम से आपने सुना आरती बर्मन और लता मंगेशकर की आवाज में रहना बीत जाए शाम न आए। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है पलक मुच्छल की आवाज में। रजदान है गाने के बोल और फिल्म का नाम है बदनाम।

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। आपने सुना हाफ गर्लफ्रेंड से, ये एक फिल्म है अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर का। तो अब हम चलते हैं अगले गाने की ओर। रेडियो SBS FM के जरिए से आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म वो कौन थी से, लग जा गले कि फिर से ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो।

तलत अजीज की आवाज में आपने सुना डैडी से सपनों के घर के। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है जुबेन नौटियाल की आवाज में, फिल्म सनक से आप सुनिए, सुना है तेरे दिल पे मेरे, लिखा है कहीं नाम है मेरा।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

इस पल मैं हूँ या तुम हो, गज़ों दो सोनू निगम है श्रेया घोषाल, वास आउट द फिल्म आजा नचले। And now the film An Evening in Paris comes with Sangha Do Sharda. Lecha, lecha, lecha, mera dil.

तू जहाँ भी जाएगी तेरे पीछे पीछे मैं आऊंगा। आई लव यू माई एंजल वॉज द फिल्म प्यारे मोहन एंड इज गज़ंग डोर कुनाल गांजावाला। Het volgende liedje via Radio SBS in het programma Gitonke Leher is gezongen door Arijit Singh. Uit de film Holiday komt Aaj Dil Shayarana Lagta Hai.

इधर चला मैं उधर चला। आपने सुना फिल्म कोई मिल गया से, और अब सुनिए फिल्म मिलन तौकी से नेहा करोरे की आवाज में शर्त।